ब्रह्मास्त्र वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यो कलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते आयो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुनी वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीबाजी संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने फिल्म 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने फिल्म 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: तथा ध्वनामय अफ सेट सोलू दुतुल नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण के लिए नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष व्यक्ति को सेवा प्राप्त करने स्पष्ट होने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष द्वारा संपर्क राखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन न करी आर्थिक सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आएगा गुनासो कई अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क राखना सकू
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान
0: आर्थिक वर्ष 2084-84 का प्रदेश संचालन करोजना कार्यक्रम को प्रस्ताव आवेदन संबंध में कोशी प्रदेश योजना आयोग को सूचना
2: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण आयोजना बंद व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बंदी स्थानीय तह प्रदेश कार्यालय आर्थिक वर्ष 2084-84 में कार्यान्वयन होने आयोजना कार्यक्रम के संबंध में इस आयोग मिथि 2082 साल चैत्र 9 गते आयोजना बंद सूचना प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2084 साल वैशाख 5 गते घटना प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव बने हुआ कृषि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथै आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क राखि हुन अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आएको वेबसाइट ppc.coc.gov.np हुन र सबैमा यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराटनगर।

0: सही फैसला स्पष्ट विचार जियो रेडियो नेटवर्क अहिले बिहान को 9 बजे
1: यो समय किसान पाल प्रोडक्ट्स प्राली को हो
0: राष्ट्र को शान किसान
1: अ कंप्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस।

0: ज्ञानात्मक वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी मन को अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासी वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीवादी संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मुख्य दुधकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मत्स्य दुधकोशी को समृद्धि मत्स्य दुधकोशी गांवपालिका सुनखुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार सांस साढ़े सात बजे देखि 8 बजे समय सुन एफएम 101.2 MHz ऑनलाइन और सुन एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन सकू कहाँ पुगे कहाँ पुगेन जनप्रतिनिधि को नजर विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेछा सुनन गांव पालिका सुनखुंड को सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेछा सुनन हरेक महीना को पहले सोमवार और अंतिम सोमवार सांस साढ़े सात बजे देखि 8 बजे समय सुनू एफएम 101.2 MHz www सुनू एफएम के पेज मार्फत विश्वभर सुन सकने नेपाली सेनामा नयाँ सैन्य भर्ना सम्बन्धी सूचना नेपाली सेनाको सेतु दरबन्दीभित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गरिन्छ। स्थानीय दुर्गापथ फोन ओखुढुङ्गा ब्यारेज ओखुढुङ्गा दरखास्त आह्वान मिति यही पुस्तक 18 गतेदेखि 13 गतेसम्म दोब्बो दोस्रो भुसाई मिति जेठ 17 गतेदेखि 23 गतेसम्म थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0735 35 576 साथ ही भर्ना सम्बन्धी थप जानकारी को लागि यही पुस्तक 18 गते को गोर्खापत्र दैनिक र नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepalarmy.in मा लगइन गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साइन चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 10 एम बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: Raio Rádio, Sono é Vento.
1: Sono FM, 101.2 MHz. Ujjwal Bhavishyako Lagi, Hamro Abhiyan.
2: Sound check. Sono FM, Studio Time.
3: Ankur, Madhyana ko 12 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू मात्र पहले स्वागत सर सेवन घंटा पहले मुख्य मुख्य खबर निजी अस्पताल में आज देखिए आकस्मिक बाहेक बीमा को सबै सेवा स्थगित उन्होंने पुनर्विचार करी बीमा कार्यक्रम निरंतरता दिन सेवा ग्राही को आग्रह महिला अधिकार को प्रभावकारी कार्यान्वयन में सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमंत्री शाह को भनाई सबै प्रकार का भेदभाव अंत्य गर्नुपर्ने में जोर आज अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस आलू जहां फल्छ त्यहाँ जीविकोपार्जन फस्टाउँछ नारा का साथ मनाइदै ईरानसँगको युद्ध विराम र सम्झौता बारे ट्रम्प अझै अनिर्णित

মুগ্ধকর রকম তবারি সাধন নম্বর একিন করে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने सवारी कर नवीकरण दस्तुर लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिन्ट माग्न बैंक भोचर गर्न अघि सवारी कर तथा दस्तुर एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बिलमा आफूले बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय

0: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मात्य दूधकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मात्य दूधकोशी को समृद्धि मात्य दूधकोशी गांवपालिका सोनकुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार साँझ 7:30 देखि 8 बजे समय सुरु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन र सुरु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: हेलो दाई नमस्कार।
2: नमस्कार भाई कता छौ?
1: म त गाउँमै छु नि दाई, एलसी परीक्षा सकेर बसेको। साथीभाइ सबैले काठमाडौँ गएर कलेज छानिसके, कहाँ पढ्ने के पढ्ने, म त अल्माउमा परे दाई।
2: अल्माउमा पढ्ने कुरै छैन भाई, तिमी सँगै एलसीबीका साथीभाइ चारणीको मनासी वर्ल्ड कलेजमा आएर बुझेर तिमी पढ्ने निधो गरेर बोलिसके। तिमी पनि ढुक्क भएर आउने, अब तिमी पढ्ने, किनकि मनासी आज लाखौँ

मैनेजमेंट कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर करना मदद करते न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासु वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीबादी संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: आईटी को क्षेत्र में काम करने रिमोट वर्क करने भाग सीमित व्यक्ति ने मत कर बांसले करने क्षेत्र कृषि क्षेत्र नहीं हो रहा कृषि में आधारित खनिज में आधारित उद्योग नहीं हो तेस कारण उद्योग साना मजूला उद्योग विकास और कृषि को विवास नहुंज हमें आर्थिक वृद्धि को लक्ष्य हासिल हो सकते मास मानी बृहत मात्रा में रोजगारी प्राप्त कर सकते तेस कारण कृषि में बजेट घटने राम संकेत हो।
1: चैत्य धान उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम में उच्च मूल्य का बाली प्रबंधन कार्यक्रम पांगरिक कृषि प्रांगणिक कृषि प्रबंधन का विशेष कार्यक्रम जस्ता योजना सरकार ने ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष को

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।